विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।

देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो? अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम मारा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए, जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटका है। बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके। बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा? तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आगे दामे। बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें, कैसे दामाद जी? नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें? नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोले

नाथ जी की बरात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जान। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखे होगो मैया तेने ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए हैं। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दो, तू कहेगो मोकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी, इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो,
अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो सौ पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है कि सांपन पे नाचे वो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो चार दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटेली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी। बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो तब तो बाहर निकालेगी घर से तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे मैं अपनों काम धंधो समान। और मैया भीतर चले। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहेगा। बोले क्या, बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है, तो को तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करूं। बोले रो रहे हो है तो याकु कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए।
मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई तब भी चुप नहीं हुए, मैया ने पल्ला में झुलाए तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली, मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे। काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली, अब कहा करे। बोले, कहा करे का नजर उतारो या की। बोले, कैसे नजर उतारे। बोले, जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी। अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली, मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहाँ है। मैया बोली, कहाँ बीमारी है। बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का। बोले, मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया, अब वा भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी, भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी। बोले, मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगो वो भूत उतारे हो। तो गोपी, अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले, मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ दूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी, नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है। तो जाके पूछी, बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले, पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले, हमारी मैया है ना, वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे हुए वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले, हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले, अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी, मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आए, चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती, मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ो और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी। बोले, मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठे हो। मैया बोले, ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको। गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कू बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली, मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है,
वहाँ भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बालकृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोड़ा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के, और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे झोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दे, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा, हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाह के ताई, तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगा। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा, रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने, मैया तो कु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो कु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले, 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता, अब छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16108 ब्याह होंगे।
जैसे मैया ने सुन।

तो बस वही खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है भैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलू, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान कर लिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोड़ा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी. भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है. गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं. इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं. इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं. महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद.

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन पॉजिटिव में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्लेस, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है। लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वही ठीक था आश्रम में, तो बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हैं हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहाँ से विधि सीख कर जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन, कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है, रोज चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा. नो, इट इज डेली. बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली. हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुक कर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखे. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. रियली इट्स एन एपिडेमिक. एवरीवन सेज द सेम लाइन एंड वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास. कभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है. वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं. मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है. आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है. अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है. इतना टाइम आ जाता है. क्यों आ गया? यहाँ का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई. जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है. पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है. आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी. सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी. एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं. और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा. तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड. इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है. ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है. कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे, कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा. सो इट इज नॉट इजी, ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं तीन दिन में. तीन दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन थ्री डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो. लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको एक घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड. हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन, इसका क्रिएटर कौन, कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स, आवर सेल्फ. जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं, दूसरों पे. हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ. ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है. हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करें, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत बहुत बहुत गलत करे हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत बहुत बहुत ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हाँ जी, नो, खड़े हो जाइए, नो. हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं. दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग. कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो. व्हाई? Why? Let's think. Why? Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे. भाई सर, please stand. Please stand. हाँ, everyone visualize one person in your life. Two people, right? Two people. He will behave his way. Suppose he shouts right now at you. Can you reply respectfully? Okay, why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you, she or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम. बैठिए. थैंक यू. दिस इज वन बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट अलाउिंग अस टू बी आर सेल्फ. नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर. हियर एंड यू आर हियर. ये उनका बिहेवियर है. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts? Me. What did they create? They created their behavior. What did I create? Is my behavior dependent on their behavior? It is dependent on me. All that I have to take care is All that I have to take care is when they do something which is their way, I have to respond my way. एक इक्वेशन आज से चेंज कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए. लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू. बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल. सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी, तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने। उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं, ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं, दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन माई चॉइस। आज एक मुक्ति यहां जो चल रहा है, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर एवरी टाइम से दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई क्रिएशन। डोंट पुट द फिंगर ऑन पीपल और सिचुएशंस के परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो, ट्रू नहीं है ये बात। They will be their way. I will be my way. फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है, लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है, कौन चूज कर रहा है? मैं। गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम। वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम, हम उनके व्यवहार के गुलाम। स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट। लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता। वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती। पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े, प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी, सारा दिन खड़े। इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे। हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है, तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं? नेगेटिव। और ब्लेम किस पर डाल देते हैं? ब्लेम किस पर डाल देते हैं? एक टीम में पांच लोग हैं, सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया, शाम तक बाकी चार में से भी एक को हो गया, तो वो एक ने उसको क्या कहा? मैं बीमार किसकी वजह से हो गया? क्या ये बात सच है? बाकी तीन क्यों नहीं हुए? बाकी तीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वीक है। लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है, मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है, तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। सिमिलरली वो पांच लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया, उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया। ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया। ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन। तो एक इक्वेशन, जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन? हम। जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं। जब हम कहेंगे उनकी वजह से, तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं? उनको। हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? कोई काम कर रहा है, हमने उसको काम करने के लिए बोला, वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग गया, वो ठीक से नहीं कर रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है? हम हो रहे। फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है? हम। और जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है? हम। काम हो जाएगा, काम हो गए, आज बहुत काम हो गए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, बहुत कुछ कमाया, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन जिस तरह कमाया, इरिटेट होके, क्रिटिसाइज करके, मजाक उड़ा के, किसी की निंदा करके जिस तरह कमाया, उसकी वजह से घर में खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई। और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन। तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना? काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए? चार्ज्ड। ये ग्लास है, भरा हुआ है। इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है। शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना है और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फुल। कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब। देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते। कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी। नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड। भागना था, भागना था। कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में, लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे। नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए। हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो। जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया। हाँ, वर्क यहाँ, दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई। कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं, रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुनाई भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं। एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी। नींबू गिर गया। राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ध्यान। द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल, ध्यान। अपने मन का ध्यान रखना। आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दें, आपका गिरना नहीं चाहिए। और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ, धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? समान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ, क्योंकि समान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं। ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो। व्हाई? बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट वी डिड, वी जस्ट केप्ट रनिंग विदाउट टेकिंग केयर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर स्टिल गोइंग टू रन बट विद टेकिंग केयर। यहां ध्यान रखते हुए भागना है, और फिर वो जो भागना भी होगा ना उसको एंजॉय करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है। यहाँ सामान मिलता है, यहाँ सुकून मिलता है। शाम को हमें सिर्फ सामान कमा के घर नहीं आना है। क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है। बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए। पीपल शुड गो होम हैप्पियर देन वॉट दे केम इन द मॉर्निंग। देन वी आर सेंडिंग हैप्पी पेरेंट्स होम। वी सेंडिंग हैप्पी पेरेंट्स होम, एंड इफ वी सेंड हैप्पी पेरेंट्स होम, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो और हैप्पी आएंगे, और उसके अगले दिन वो और हैप्पी आएंगे, और डे बाय डे हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आज क्या हो रहा है? डे बाय डे हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जब हम चेंज होंगे, हमारा घर का वातावरण चेंज होगा, हमारा वर्क कल्चर भी चेंज हो जाएगा, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं। एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट। बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया? चार्ज करना शुरू किया। तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: RG Anjali.
1: एक नई सुबह, नई एनर्जी और एक नए दिन के साथ और फिर से लेकर आ गई हूँ रेडियो महारानी पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ आप सभी का मनपसंद मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हूँ। इंफोटेनमेंट का डोज जहाँ पर आपको डबल मिलने वाला है और सुबह की तरह ना ये सुबह भी बड़ी हसीन होने वाली है। तो गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की गर्मा गर्म चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ आपको मिलता है इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्पेशल डेज, फन फैक्ट्स और आपके फेवरेट कानों का तड़का। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरशी अंचली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात करते हैं वेदर की। आज तो आज फरीदाबाद का वेदर ना बड़ा ही सुहाना है। आज हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 33 डिग्री। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात करें 27 डिग्री है। साथ ही विंड स्पीड आपको 13 मिलने वाली है और ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 72%। और आज दिन ना थोड़ा सा सनी सनी है, यानी कि आज बारिश नहीं होने वाली। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। खैर मौसम तो बहुत प्यारा है और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। म्यूजिक ब्रेक के बाद

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
4: इरशाद,
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
4: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
5: What I want is Sony, yeah.

पता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: क्या कभी आपने सोचा है हम रोज कितनी चीजों को बिना नोटिस के फील करते हैं। सुबह की चाय की खुशबू हो, बारिश की आवाज हो, पसंदीदा गानों की मेलोडी हो और घर के खाने का टेस्ट हो, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बिना छुए फील कर लेते हैं। आज मैं क्यों बातें कर रही हूँ उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी आपको। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। हमारे फाइव सेंसेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना खूबसूरत और खास बना देते हैं। अगर बात करें सबसे पहले देखने की, फिर बात आती है सुनने की, फिर बात आती है सूंघने की और फिर आता है चखना और सबसे खास चीज है महसूस करना। सो बेसिकली फाइव सेंसेस है जिनका हम इस्तेमाल अपने डेली बेसिस पे करते हैं। हम इतनी फास्ट लाइफ जीते हैं कि कई बार इन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस ही नहीं करते हैं। तो बस आज एक छोटा सा चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड चैलेंज बहुत ही सिंपल सा है। अपनी फेवरेट चीज को थोड़ा सा ध्यान से एंजॉय कीजिए, चाहे वो एक कप चाय हो, एक गाना हो या फिर एक सनसेट का व्यू, क्योंकि लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं महसूस करने के लिए भी होती है। तो इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: कार्निवल, द लास्ट राइड, किंग,

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। पुरानी चीजों को सीधा थ्रो कर देना इजी है, लेकिन उन्हें कुछ नया और यूजफुल बना देना, वही तो क्रिएटिविटी है जो हमें ये सिखाता है कि पुरानी चीजों को वेस्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। फिर चाहे बात हो पुरानी बॉटल से प्लांटर बनाने की, या फिर अपनी ओल्ड टी शर्ट से शॉपिंग बैग बनाने की, या ओल्ड जार से रूम डेकोर बनाने की, ये सारी चीजें ना पुरानी चीजों में जान डाल देती है और कभी कभी चीज बेकार लगती है और वही थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ ना हमारी फेवरेट बन जाती है। सो एक छोटा सा डिफरेंस लेकर आती है सारी चीजें। पहली बात तो वेस्ट कम होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारा एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलता है। सो हर पुरानी चीज का एंड नहीं होता, कुछ चीजों का नेक्स्ट वर्जन होता है। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा और आज अपने घर में जितनी भी पुरानी चीज है ना जो आपको वेस्ट लगती है, बस अपनी क्रिएटिविटी की जादू की छड़ी वहाँ घुमा दीजिए और पुरानी चीज को ना कुछ नया बनाइए। सो आज घर में जितनी भी पुरानी चीज है ना जाकर जरूर ढूंढेगा और उन्हें अपसाइकल कर दीजिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
0: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना कभी कभी आपको बहुत ज्यादा थका देता है? यानी कि अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को लास्ट में रख देना शायद उतना हेल्दी नहीं होता। कभी आपने फील किया है? बिकॉज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब काइंडनेस धीरे धीरे पीपल प्लीजिंग बन जाए, जब हर बार हाँ बोलते बोलते हम अपनी नीड्स इग्नोर करने लगे, तो स्ट्रेस बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का इफेक्ट कभी कभी स्लीप, एनर्जी और मूड पर भी दिख सकता है। सो यहाँ ना मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आई। कहानी बहुत छोटी है। ये कहानी हमें बताती है कि एक इंसान सबकी हेल्प करता था, एक्स्ट्रा काम भी ले लेता था, कभी मना नहीं करता था। तभी एक दिन किसी ने पूछा, तुम खुद का ध्यान कब रखते हो? और उसके पास जवाब था, नहीं, मैं खुद का कभी ध्यान ही नहीं रखता। सो ये कहानी हमें बताती है कि दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपके बारे में सोचे। एंड आज का थॉट ऑफ द डे ये है, काइंड होना अच्छा है लेकिन बाउंड्रीज भी उतनी ही जरूरी है। सो कभी कभी नहीं बोलना रूट नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है। सो आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए जगह बनाना सेल्फिश नहीं बल्कि सस्टेनेबल होता है। तो आज दूसरों का ख्याल रखिए, पर अपनी बैटरी भी रिचार्ज करना मत भूलेगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: कैसी?
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
3: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: की नचले।
1: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ, सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

ईशाना सुरे के साथ मैं फिर से लौट आई हूँ करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। रहा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। कभी रोड ट्रिप पर जाते हुए आपने नोटिस किया है कि हाईवे के ज्यादा साइन बोर्ड ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? आपने भी यही सोचा था कि ये सिर्फ एक डिजाइन है? नहीं, तो एक डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है। तो भाई यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ग्रीन कलर है सो वो हमारी आंखों को रिलेटिवली कम्फर्टेबल लगता है और लॉन्ग डिस्टेंस रीडिंग में हेल्प कर सकता है। और इसके साथ ही जब ग्रीन बैकग्राउंड पर व्हाइट लेटर्स होते हैं तो इन्फॉर्मेशन दूर से भी ज्यादा क्लियर दिख सकती है, फिर चाहे दिन हो या रात हो। सो इसी वजह से रोड साइन में अलग कलर का अलग पर्पस होता है। अगर बात करें रेड की तो रेड दिखाता है वार्निंग या इम्पोर्टेंट अलर्ट। अगर बात करें येलो की सो ये दिखाता है अटेंशन। अगर बात करें ग्रीन की तो डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन। सो कभी भी अगर आपको रेड येलो ग्रीन दिखे ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड साइन आपको क्या बताने वाला है। सो देखा आज कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया। कभी आपने सोचा है कि रोज देखने वाली चीजों के पीछे कितनी बड़ी और इंटरेस्टिंग साइंस छुपी हो सकती है? सो अगली बार जब भी रोड ट्रिप पर निकलिए और साइन बोर्ड को सिर्फ पढ़िए मत, ऑब्जर्व भी कीजिएगा। और इसी के साथ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बनी रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया और स्कैम ये है, शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से। बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपीके फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपीके फाइल। तो आखिर ये एपीके फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपीके फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए ऐप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है, उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्त वो फैमिली होते हैं जो हम खुद चूज करते हैं, बेसिकली उस फैमिली पर हमारा पूरा पूरा राइट होता है। सो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस दिन, जो उन खास लोगों के नाम है जो हर खुशी और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। वहाँ पर वो चार लोग क्या कहते हैं वो नहीं आते हैं, और ये बात हमारे मम्मी पापा भी जानते हैं, और शायद तभी वो कितना भी कुछ कह ले हमारे दोस्तों के बारे में, लेकिन उन्हें पता है एंड मोमेंट पे काम तो वही आने वाला है। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दोस्त था जो हर एग्जाम से पहले कहता था, भाई टेंशन मत ले सब हो जाएगा, और रिजल्ट के दिन वही सबसे ज्यादा टेंशन में होता था। यही तो दोस्ती है, कभी एडवाइस, कभी सपोर्ट और कभी बिना वजह की हंसी, और इन सब का कॉम्बो बनकर मिलाता है हमारी एक परफेक्ट फैमिली को। सो अगर बात करें बेस्ट फ्रेंड्स की, आजकल अगर दोस्ती की बात करूँ तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन एक टाइम था जहाँ दोस्ती बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, खासकर स्कूल टाइम वाली दोस्ती। सो एक ना बहुत अच्छा तरीका है अपने बेस्ट फ्रेंड को पहचानने का, आपकी हर वियर्ड हैबिट जानता हो वो होता है बेस्ट फ्रेंड, बिना बोले आपका मूड समझ जाए वो होता है बेस्ट फ्रेंड, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले खड़ा होता है आपके लिए वो होता है दोस्त, और साथ ही हर मेमोरी को स्पेशल बना दे वो होता है बेस्ट फ्रेंड। सो लाइफ की जर्नी में डेस्टिनेशंस याद रहे या ना रहे, लेकिन दोस्त के साथ किया हुआ सफर हमेशा याद रहता है। तो आज अपने बेस्ट फ्रेंड को एक मैसेज, एक कॉल या फिर एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, और उन्हें बताइएगा कि शुक्रिया आपका हमारी जिंदगी में आने के लिए, बिकॉज कहते हैं ना हर एक दोस्त जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे दोस्त लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट होता है। सो माय डियर लिसनर, आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास अब तक कोई दोस्त नहीं है ना, तो जाइए लोगों से बात कीजिए, अपनी वाइब के अकॉर्डिंग अपना एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढिए, मेमोरीज बनाइए, और साथ ही अपनी जिंदगी में ना थोड़ी सी हैप्पीनेस और लेकर आइए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: कभी

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

नहीं नहीं अप्पा फिर मिलांगे, बिल्कुल फिर मिलांगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। मंडे टू फ्राइडे आती हूँ सुबह 7 से 10, आपसे करने बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट्स लेकर आती हूँ, सोशल स्यापा से लेकर आपके अपने शहर में वेदर से लेकर ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी आपको बताती हूँ, साथ ही एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती हूँ। तो फिलहाल वक्त हो गया है जाने का, यानी कि बातों का कोटा आज का यही खत्म होता है, लेकिन अब कल नहीं, अब सीधा मंडे मिलेंगे सोने एनर्जी के साथ, एंटरटेनमेंट के डबल डोज के साथ और एक नई वाइब के साथ फिर से मिलूंगी आप सभी से मंडे करने ढेर सारी बातें। तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा, अपना ख्ययाल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ अगर बात की जाए अब 10:07 हो रहे हैं सुबह के और 29 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ है। अच्छी बात है, कल भी पूरी बारिश रही और हल्की हल्की ये बौछार वाली बारिश मौसम में काफ़ी अच्छा बदलाव ले गई। आज का दिन भी बारिश के आसार है, बारिश और बीच में धूप भी हो सकती है, जहाँ सुबह भी कुछ धूप रही थोड़ी देर के लिए। वहीं बात की जाए साथ में अगर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कल के दिन काफ़ी अच्छे न्यूमेरिक पर आ गए थे लेकिन आज फिर 100+ होते नजर आए, यानी कि AQI शहर में कंट्रोल हो ही नहीं रहा। बारिश ने जो एक दो दिन पॉल्यूशन को धोया, बस उसके बाद वापसी अपनी पोजीशन पर दिखता नजर आया। हर शहर के बारे में बहुत ही चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, लेकिन उससे पहले सुना देता हूं और कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यार दोस्तों कि जैसा आप सब जानते हैं कि बारिश यानी कि मानसून का सीजन, मानसून के सीजन में एक बात हमें ध्यान रखनी, बरसाती पानी निकासी नहीं होने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी फैलती हैं कि अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी लार्वा आ जाता है। इस खतरे को देखते हुए अगर बात की जाए तो कहीं भी अगर आपको ऐसा छत पे आपास में सोसाइटीज़ में अगर कहीं भी ऐसा पानी भर जाता उन पानी को स्पेशली सबसे पहले खाली करें। घर में रखे कूलर, टंकियां, गमलों, फ्रीज की ट्रे या फिर बाकी पानी जमा होने वाली बर्तनों को पूरी तरह से खाली रखें। डेंगू के प्रमुख लक्षण अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द होने लगता, तो इसलिए प्लीज़ ऐसे बारिश के मौसम में कहीं पर भी पानी जमा होने ना दें जिससे कि लार्वा ना बने। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं मैं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे दोस्त।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्म फाइव। और यहाँ पे आज चर्चाएं होने वाली हैं नई अपकमिंग मूवी रिलीजेस के बारे में कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को हैं बिल्कुल तैयार। जहाँ दोस्तों मैं बात करूँ कि कौन कौन सी नई कहानियां आएंगी, ट्रेलर टीजर तो कहीं होगा नए गानों का धमाल, फर्स्ट लुक हो रहे हैं आउट तो कहीं हो रहा है नई कहानी की अनाउंसमेंट का इंतजार। हिंदी सिनेमा साउथ इंडस्ट्री, साउथ से लेकर के पंजाबी इंडस्ट्री के गाने तो कहीं पर है हॉलीवुड के एक्शन और सस्पेंस का धमाल। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा कुछ धमाकेदार से गाने।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं एक और बढ़िया कहानी के बारे में। हैवान की अगर बात की जाए तो 11 सितंबर 2026 डेट जो है लॉक हो चुकी है, जहाँ पे प्रियदर्शन ये एक्शन थ्रिल कहानी लेकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 18 साल बाद स्क्रीन पर दो स्टार्स फिर से एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ, ये जो ये अक्षय कुमार और सैफ की, ये दो स्टार्स की अगर बात करें 18 साल बाद एक साथ फिर से देखने वाले। मेकर्स ने पोस्टर के साथ डेट अनाउंस करी है। इससे पहले अगर बात की जाए, अक्षय और सैफ की जोड़ी स्क्रीन पेयरिंग टेंशन में नजर आई थी, जो 2008 की कहानी रही। दोनों का ये जो कमबैक है एक साथ काफी ज्यादा बज क्रिएट करते हुए नजर आया और फैंस भी बहुत उत्सुक हैं दोनों को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए। और प्रियदर्शन की कहानी, जिसकी तारीफ में अनाउंसमेंट के टाइम से ये हो रही है कि बहुत बेहतरीन सेट भी बनाए गए इस कहानी को शूट करने के लिए, तो हर कोई इंतजार कर रहा सितंबर का फॉर रिलीजिंग हैवान। इनके अपोजिट और भी बहुत बेहतरीन स्टार कास्ट हमें देखने को मिलने वाली, इसकी फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन कह लीजिए या फिर कास्ट की डिटेलिंग कह लीजिए बताएंगे प्रियदर्शन, तो हम आपको बताएंगे। करते रहेंगे इंतजार, बाकी ऐसी और भी चर्चाएं तो होती रहेंगी। उस पर एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं वाराणसी एसएस राजा मौली की। अगर बात की जाए स्टैंड अलोन फिल्म कंफर्म करते हुए नजर आए, ये एक फ्रेंचाइज या टू पार्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा। राजा मौली साहब का सादा सीधा कहना है कि वाराणसी एक ही फिल्म होने वाली, कोई फ्रेंचाइज पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर करते हुए फैंस की उत्सुकता बहुत ज्यादा है कि भैया फुल फ्लेज कहानी एक कहानी में उतारने जा रहे हैं, कि फैंस की डिमांड पर भी इसका अगला पार्ट नहीं आएगा। यानी कि एक ही कहानी बहुत सारे क्रिस्प देखने को मिलेंगे, जहां पर कि कहानी की स्टार्टिंग के साथ प्रॉपर एंडिंग भी पहले से स्क्रिप्ट की जा रही है। राजा मौली का कहना है कि ये कहानी माइथोलॉजी, इंडियन फोकलोर, टाइम ट्रेवल और ग्रैंड एक्शन का मिक्स होने वाला। बताया कि इमोशनल कोर फादर और सन का रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जाने वाला है, जिस कहानी में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज मेन लीडिंग किरदारों में नजर आने वाले हैं। शूटिंग अक्टूबर 2026 तक रैप अप किया जाने वाला है और कहानी की रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर ऑन 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज की जाने वाली है। इंतजार रहेगा वाराणसी की रिलीजिंग का, जहाँ कहानी कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाई जाने वाली है। ना ही रोमांचिक मूड होने वाला है, ना ही कॉमेडी, ना ही एक्शन, माइथोलॉजी से जुड़ी कहानी। क्या धमाल मचाएगी देखने वाली बात होगी। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ, फिल्मेटॉनिक आरजे मॉनिक। यहाँ बात करते हैं एक और कहानी के बारे में, आदर्शा कुटुंबम हाउस नंबर 47 की। अगर बात की जाए इसकी रिलीजिंग जो है, वेंकटेश कॉमेडी थ्रिल कहानी 2 अक्टूबर 2026 को लेकर के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कहानी में वेंकटेश का नाम इसमें ऑडियंस एक्साइटमेंट्स और ज़्यादा बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि वेंकटेश का नाम यार जहाँ जुड़ गया तो कहानी और ज़्यादा धमाल मचाएगी, ऐसा फैन पहले ही सोच लेते हैं। तो इस कहानी का ओवरऑल बस जो है वो वेंकटेश के नाम पर ही है, और देखते हैं हाउस नंबर 47 जो फोकस्ड इस कहानी की टैगलाइन भी नजर आ रही है, ये हाउस नंबर 47 क्या कहानी कहते नजर आएगा। जहां इस कहानी के फ्लेवर की अगर बात की जाए, फैमिली एंटरटेनमेंट है लेकिन साथ ही साथ थ्रिल भी देखने का मौलेगा, और ये थ्रिल जो है हाउस नंबर 47 जो टैगलाइन है ना, यही कुछ ना कुछ थ्रिल या फिर अगर कह लीजिए सस्पेंस से जुड़ी कहानी सबके सामने लेकर के आएगा। देखें कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, 2 अक्टूबर का करना है इंतजार, और बाकी ऐसी चर्चाएं करता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से। उससे पहले एक और ट्रैक।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्लेबैक। यहाँ दोस्तों बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन स्टार जूनियर एनटीआर के बारे में। जूनियर एनटीआर के अगर फेमस किरदारों की बात की जाए, कुमारम भीम जो आरआरआर का एक बेहतरीन किरदार था, वहीं राजा यंग की अगर बात की यामोदोंगा में चैरी, राघवा, अभिराम और सत्यम जैसे किरदार निभा करके इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। अब ये जूनियर एनटीआर की चर्चाएं चलने लगी हैं फिर से, क्योंकि जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम श्रीनिवास ने ऑफिशियली एक माइथोलॉजिकल ड्रामा कहानी के लिए फिर से रियूनियन अनाउंस किया। पोस्टर के साथ जो कैप्शन आया उसमें यह हिंट दिया गया कि लॉर्ड सुब्रमण्य स्वामी और लॉर्ड मुरुगु कार्तिकेया की माइथोलॉजिकल बेस्ड ये कहानी जापान इंडिया में लार्ज स्केल के रूप में रिलीज की जाएगी। अनाउंसमेंट पोस्टर देखिए, सबसे ज्यादा इंतजार सबका रहता है कि अनाउंसमेंट पोस्टर में क्या कुछ क्रिस्प दिखाए गए हैं, जिससे कि फैंस अलग अलग अंदाजा लगाते हैं यार कि कहानी में कुछ ऐसा भी होगा, ये भी होगा और पता नहीं क्या क्या। ऐसी अनाउंसमेंट पोस्टर अगर इन मेकर्स की बात की जाए तो इसमें वॉर बैकग्राउंड फ्लेम्स और बीच में त्रिशूल का विजुअल दिखाया गया, जिसे फैंस ने माइथोलॉजी हैवी टोन का संकेत माना। द सन ऑफ शिवा, द प्राइड ऑफ पार्वती और द अटर्नल कमांडर जैसे फ्रेजेस यूज करते हुए इस पोस्टर को रिलीज किया गया है। अब देखते हैं लॉर्ड सुब्रमण्य स्वामी पर बेस्ड ये कहानी क्या कुछ लेकर के आई। जहां डिस्कशंस में गॉड ऑफ वॉर टाइप ऑरा भी दिया जा रहा है जूनियर एनटीआर और हारिका एक कहानी लेकर के साथ में आ रहे हैं। ये रियूनियन क्या धमाल मचाएगी। कोलैबोरेशन की अगर बात की जाए तो पहले उन्हें अरविंदा समीता के साथ कोलैबोरेशन होती नजर आ रही थी, फाइनली एग्जैक्ट कोलैबोरेशन अनाउंसमेंट और रीयूनियन सबके सामने आ गई। तब से फैंस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस कहानी को इतने बेहतरीन तरीके से फर्स्ट रिलीजिंग पोस्टर में अनाउंस किया गया, तो आगे कहानी के ट्रेलर टीजर क्या धमाल मचाएंगे अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। बाकी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फर्मी फ्लेवर। यह बात करते हैं ओटीटी के बारे में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कुछ बेहतरीन कहानियां जिनका लुत्फ उठा सकते हैं और जो कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर देखने का मौका नहीं मिल पाता जिन लोगों को, यार तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो नए कहानियों का मौका ओटीटी पर उठाइए। बात करूं यहाँ पे इस वक्त की सबसे बढ़िया कहानी जो भी बहुत धमाल मचा रही है, हम सब जानते हैं सोशल मीडिया और ओटीटी दोनों पर, प्रीतम एंड पेड्रो, जहाँ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर की एक वर्किंग स्टाइल जो दिखाई गई है एक होम साइड केस के साथ साथ एक सुपर रूरल सेटिंग एजुकेशन और सोशल रेजिडेंस के अराउंड बनी ये कहानी। बात की जाए यहाँ पे अरशद वारसी के बारे में, अरशद वारसी यार एक ऐसे आर्टिस्ट जहाँ इनको हमने सिनेमाघरों की अगर बात की जाए तो उन किरदारों में देखा जहाँ प्यार बटोरा लेकिन शायद ऐसा लगता था कुछ तो अधूरा है, वो रोल अब तक ऑफर नहीं हो पाया या फिर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हो पाई जहाँ अरशद वारसी कुछ अलग लेवल पर स्टैंड होते नजर आए। ये शुरुआत हुई अगर बात करें तो अरशद वारसी की कुछ डिफरेंट किरदार की तो कलकी से, कलकी हम सब जानते हैं कि इतनी बेहतरीन कहानी रही जहाँ पूरी सीरीज में अरशद वारसी के किरदार को इतना फोकस रखा गया, स्टोरी बहुत बढ़िया थी और अरशद वारसी को लगता है कि अपनी लाइफ का बेस्ट सीरीज की बात कह लीजिए, बेस्ट कैरेक्टर की बात कीजिए, वो परफॉर्म करते नजर आए। और ऐसे प्रीतम एंड पेड्रो में उनको सेकेंड ऐसा कुछ ऑफर रोल हुआ जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा तारीफें होती नजर आ रही हैं, तो प्रीतम पेड्रो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं जिसका लुत्फ उठाई। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: अगर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फॉर माई फ्लेवर। यहां दोस्तों बात करते हैं, देखिए कुछ नाम जो आप बहुत पसंद करते हैं उनके किरदारों को, उनके टीवी स्टाइल। सबसे पहले बात करता हूं यहां पे दिलीप जोशी साहब के बारे में, वही बात करें तनुज साहब के बारे में, दयाशंकर पांडे, शरद संकला जैसे स्टार जाहिनी के साथ। एक नाम और लेता हूं, बलविंदर सिंह संधू। बात करूं यहां पे तो ये सभी स्टार्स की तो हमारे वन ऑफ द फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आते हैं, जहां इस कहानी की शुरुआत हुई 2008 में। 2008 से लेके अब देखिए 26 आ चुके, लगभग 2 साल बाद इसको 20 साल पूरे होते नजर आएंगे। और फैंस फॉलोइंग इसकी इतनी बेहतरीन है कि हर किरदार को पसंद करते नजर आते हैं फैंस। लेकिन अजब से दया भाभी इस सीरियल से उनका कचाव छुआ तो कहीं ना कहीं सीरियल की टीआरपी कम होते जरूर नजर आए, लेकिन इनके किरदारों के बात करिए होते हैं कि यार ये कहानी बहुत पसंद है। इस कहानी की एक एक किरदार को लोगों ने अपने दिलों में बसा लिया कि इतने बेहतरीन किरदार लेकर के आते हैं, हर बार कुछ डिफरेंट किस्से कहानियां। कि अगर कुछ भी आपको टीवी पे लग रहा है यार देखने लायक नहीं है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखते हैं तो फैमिलीज को यही लगता है यार कि बस यही रुक जाते हैं, यहाँ पे हंसी के ठहाके भी होंगे और कभी कभी कुछ ना कुछ सीख भी मिलती नजर आएगी। अब आप सोचेंगे एकदम से यार मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जिक्र क्यों किया, वो क्यों किया बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ गाने सुनाता हूँ, गानों के बाद बताऊंगा कि आज ये जिक्र क्यों आया।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं जानकी तारक मेहता के उल्टा चश्मा। हमने यहाँ चर्चाएं करी, वैसे ओरिजिनली अगर बात की जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, ये कहानी एक ये दुनिया रंगीन है से रीमेक कहा जाता है या फिर एडेप्टेशन कहा जाती है कि यार गुजराती राइटर तारक मेहता का ह्यूमर कॉलम दुनिया ने औंधा चश्मा से भी इंस्पायर्ड कहा जाता है। एक्चुअल कहानी एक्चुअली यह है 1999 की बात थी जब एक कहानी जिसका नाम था ये दुनिया है रंगी, वहाँ पे यही किरदार हमें नजर आए थे। ऐसी सोसाइटी और अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड पर्सन्स फैमिलीज वहाँ रहा करते थे, तो ऐसे किरदारों की और ये सोसाइटी की शुरुआत उधर से हुई। 1999 की बात थी जब ये किरदार हमें वहाँ पे नजर आए थे, लेकिन मेंशन ये है कि ये पांचों स्टार्स उसमें हमें दिखे लेकिन अपने इन किरदारों में नहीं, डिफरेंट किरदारों में। जहाँ दिलीप दोषी साहब बालकृष्ण के रूप में थे तो तनुज महाजले और किसी किरदार में, दयाशंकर पांडे कास्मिक कैरेक्टर किसी और में थे, यहाँ सभी कैरेक्टर्स वहाँ दिखे और इन्हीं कैरेक्टर्स को पिक भी किया गया था तारक मेहता उल्टा चश्मा के लिए। लेकिन इनके ओरिजिनल वर्जन अब जो आए वो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिलीप जोशी साहब यानी कि जेठालाल इस बार उस किरदार में है, पहले अय्यर के रूप में थे, अय्यर उस टाइम किसी और किरदार में थे, अब यहाँ पे अपने अय्यर वाले किरदार में आए हैं। ये सभी वो स्टार्स हैं जिन्होंने ये दुनिया रंगीन है में भी कमाल किया, फिर इतने सालों बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला। फैंस जिन्होंने ये दुनिया है रंगीन है देखी थी उनका कहना था कि यार तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो इंस्पायर्ड बाई ये दुनिया रंगीन है से, लेकिन मेकर्स ने कहा आप कह सकते हैं कि रीमेक तो नहीं है, इंस्पिरेशन कुछ हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज उसके पीछे भी एक रीजन था। वो क्या था आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुना दूंगा कुछ और बढ़िया बढ़िया से गाने।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: गाना फ्रॉम द मूवी सत्या और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात हो रही है तो इसको एक्चुअल अगर बात की गई तो किससे इंस्पिरेशन मिला। गुजराती राइटर तारक मेहता की अगर बात करें, उनका ह्यूमर कॉलम रहा करता था दुनिया ने औंधा चश्मा। इस टाइटल से कह लीजिए, इस कॉलम से कह लीजिए, इस कहानी को इंस्पिरेशन लेकर के बनाया गया और जहाँ इतने साल हो चुके हैं इस कहानी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते भी नजर आते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार जा करके सोशल मीडिया पर पसंद करते भी नजर आते हैं लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार जा करके सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा गया कि ये दुनिया रंगीन है को, और उसके बाद तारक मेहता के कैरेक्टर्स तो आपके माइंड में फिट हैं। जिन्होंने नहीं देखा ये दुनिया रंगीन है उनको देखिए, फिर आप सोचेंगे हाँ यार बिल्कुल एग्जैक्टली वही नजर आती है ये कहानी, बस कैरेक्टर्स थोड़े से यहाँ से वहाँ और कुछ नए चेहरे इंक्लूड है। कहानी देखिएगा जरूर और उसके बाद मुलाकात होगी आपसे मंडे के दिन, तो फिर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्या कुछ बिल्कुल मैच लगा या आपके क्या रिव्यूज हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह, करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के, और जाते जाते एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए।
1: अरे, ए, ए, ए,

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

म्यूजिक की दुनिया में सिंगर्स बहुत आते हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो गाने से पहले ही पहचान ली जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

सिर्फ 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। जब उनके दोस्त स्कूल के बाद खेलने जाते थे तब शंकर सुर और ताल की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उनकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। वो उन लोगों में से नहीं थे जो बचपन से डिसाइड कर लेते हैं कि सिंगर ही बनना है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया। दिन भर ऑफिस का काम और फिर म्यूजिक की प्रैक्टिस। एक तरफ सिक्योर करियर था, दूसरी तरफ पैशन। और कई साल तक उन्होंने दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। फिर दिल की आवाज बार बार एक ही बात कह रही थी, म्यूजिक ही उनकी असली मंजिल है। हर किसी के पास टैलेंट होता है, लेकिन अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। और ये हिम्मत थी शंकर महादेवन के पास। और आगे कैसे उनकी लाइफ में सब कुछ बदल गया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।
1: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

कभी कभी एक गाना आर्टिस्ट को फेमस नहीं बनाता, एक गाना आर्टिस्ट को फिनोमिना बना देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं शंकर महादेवन की। ईयर 1998, एक ऐसी एल्बम रिलीज हुई, उस एल्बम का सबसे बड़ा गाना था ब्रेथलेस, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। लोग बार बार कैसेट रिवाइंड करके सुन रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, कुछ लोग कह रहे थे कि एडिटिंग का कमाल है, लेकिन सच ये था कि शंकर महादेवन ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकल कंट्रोल और ट्रेनिंग का डेमोंस्ट्रेशन दिया था। अचानक से हर जगह उनका नाम होने लगा, रेडियो स्टेशन पर, टीवी इंटरव्यूज में, म्यूजिक मैगजीन्स में, और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये सिंगर है कौन। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि शंकर ने अपनी सक्सेस को कभी भी सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक गाना करियर बना सकता है, लेकिन करियर को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ब्रेथलेस ने उन्हें फेमस जरूर बनाया, लेकिन उन्हें लेजेंड उनकी कंसिस्टेंसी ने बनाया। और कैसे वो सिंगर से म्यूजिक कंपोजर बने, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: जा रहा हूँ। सवार है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू, बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओह नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अली, दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कुछ लोग एक फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्शन बदल देते हैं। ब्रेथलेस के बाद शंकर सिर्फ सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसी दौरान उनकी पार्टनरशिप बनी एहसान नूरानी और लॉय मेंडोंसा के साथ और जन्म हुआ शंकर एहसान लॉय का। ये सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं था, ये बॉलीवुड के म्यूजिक लैंडस्केप में एक रेवोल्यूशन था। साल 2001 में दिल चाहता है रिलीज हुई फिल्म ने यूथ सिनेमा को बदला और उसका म्यूजिक उसने बॉलीवुड के साउंड को मॉडर्न बना दिया। फिर आई कल हो ना हो, एक टाइटल ट्रैक जो आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। फिर आई रॉक ऑन, रॉक ऑन ने म्यूजिक को मेनस्ट्रीम बनाया। भाग मिल्खा भाग ने मोटिवेशन को मेलोडी में बदल दिया। हर फिल्म के साथ उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। उन्होंने गाने कंपोज नहीं किए, उन्होंने पूरी जनरेशन के इमोशंस को साउंड ट्रैक दिया। और कैसे उनको अवार्ड से नवाजा गया करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ? बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
4: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए, पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिम्मी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंट जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

अवार्ड शेल्फ पर रखे जा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दिल में रखी जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं शंकर महादेवन की। करियर के दौरान शंकर महादेवन ने काउंटलेस अवार्ड्स जीते, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंटरनेशनल रिकग्निशन, सब कुछ मिला। लेकिन अगर म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों से पूछा जाए कि शंकर महादेवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो शायद जवाब अवार्ड्स नहीं होगा, जवाब होगा रिस्पेक्ट। क्लासिकल म्यूजिशियंस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्लेबैक सिंगर्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, यंग आर्टिस्ट उन्हें मेंटोर मानते हैं, और ऑडियंस उन पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि उन्होंने कभी म्यूजिक को सिर्फ बिजनेस नहीं समझा। म्यूजिक उनके लिए आर्ट फॉर्म था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसी विजन के साथ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन को भी प्रमोट किया और हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। कुछ लोग सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग दूसरों को भी सक्सेसफुल बना देते हैं, और यही थे शंकर महादेवन। और क्यों शंकर महादेवन सिंगर से बढ़कर हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

हर जनरेशन को कुछ आवाजें मिलती हैं, जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। शंकर महादेवन उन आवाजों में से ही एक है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं द लेजेंड शंकर महादेवन की। आज के एरा में ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। एक गाना आता है, वायरल होता है और कुछ हफ्तों बाद लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन शंकर महादेवन का म्यूजिक इस साइकिल से अलग है। उनके गाने सिर्फ चार्ट्स के लिए नहीं बने, वो दिलों के लिए बने हैं। इसीलिए कल होना हो आज भी उतना ही इमोशनल लगता है जितना पहले लगता था, और इसीलिए मितवा आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना पहले लगता था, और इसीलिए उनकी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस आज भी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। सबसे खास बात यह है कि इतनी सक्सेस के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में ह्यूमिलिटी दिखती है। ना एरोगेंस, ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना अटेंशन के लिए ड्रामा, बस म्यूजिक। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं मानते, वो एक टीचर हैं, एक कंपोजर हैं, एक परफॉर्मर हैं, और सबसे बढ़कर एक इंस्पिरेशन है। आज अगर इंडियन म्यूजिक की कहानी लिखी जाए तो शंकर महादेवन का चैप्टर सिर्फ उनके गानों के बारे में नहीं होगा, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पैशन के बारे में होगा। कुछ लोग गाने गाते हैं और कुछ लोग आवाज के जरिए यादें बना देते हैं। शंकर महादेवन ने सिर्फ सुर नहीं दिए, उन्होंने दिए इमोशंस, और शायद इसीलिए जब भी उनकी आवाज सुनाई देती है लगता है जैसे म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है। तो ये थी कहानी शंकर महादेवन की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें टेक्स्ट करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आगे आप किस सेलिब्रिटी की कहानी सुनना चाहते हैं बताइएगा जरूर हमें मैसेज पे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मिल जाएंगे, आप लोग उधर जाइए हमें मैसेज भेजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। एंड मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं एक ऐसा शो जहां कहानियां सिर्फ सक्सेस की नहीं होती बल्कि उन सपनों की होती हैं जो कभी बहुत छोटे से शुरू हुए थे। इस शो का नाम है बिजनेस अनप्लग्ड और यहाँ मैं आपको मिलवाती हूँ उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को लेकर बहाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें ही अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि सच कहूँ तो किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उनके पीछे होती है एक लंबी जर्नी। कभी गरीबी, कभी स्ट्रगल, कभी एक ऐसा दिन जब लगा कि शायद अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं रुकते नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसा लड़का जिसके घर की हालत इतनी मुश्किल थी कि कई बार कपड़े और चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिनकी माँ घर चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर कॉलेज जाता और कॉलेज शुरू होने से पहले घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करता क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन वही लड़का बाद में एक ऐसी कंपनी खड़ी करता है जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक में अपना नाम बना चुकी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू आज हजारों करोड़ रुपए में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू होकर एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर दिया। उस नाम के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

थी जिनका बचपन बहुत साधारण था। एक ऐसा लड़का जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिनकी माँ घर को चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर वो कॉलेज जाते थे, घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तो अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं रिवील करने जा रही हूँ आज के बिजनेस अनप्लग्ड के बिजनेस टाइकून का नाम। तो आज की कहानी है डॉक्टर ए वेलुमणि की। जी हाँ, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और MD। आज के वक्त में थायरोकेयर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी है। इस कंपनी के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स हैं और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है। आज इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 6,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक ऐसी जर्नी छुपी हुई है जिसमें गरीबी भी थी, स्ट्रगल भी था और कई ऐसे मोमेंट्स भी थे जब सब कुछ आसान नहीं था। तो आखिर कैसा था ए वेलुमणि का चाइल्डहुड, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का धीरे धीरे साइंटिस्ट बना और फिर साइंटिस्ट से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उनकी फैमिली, एडुकेशन और लाइफ की शुरुआती ईयर्स की कहानी आज मैं बताने वाली हूँ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आप मेरे साथ बने रहिए।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

आपके साथ हूँ गीत और आज मैं बात कर रही हूँ थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर ए वैल्यू मनी के बारे में। क्योंकि अक्सर हम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो जर्नी होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और वैल्यू मनी की स्टोरी तो सच में एक ऐसी स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर फोकस स्ट्रांग हो तो रिसोर्सेज की कमी भी इंसान को रोक नहीं सकती। ए वैल्यू मनी का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। इनका परिवार बहुत ही ज्यादा साधारण था, बल्कि यूं कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर थी। इनके फादर एक पुअर फार्मर थे, लेकिन इनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। मतलब खेती करते थे लेकिन जमीन इनकी नहीं थी। घर में चार बच्चे थे और इतने बड़े परिवार को चलाना आसान नहीं था। ऐसे में वैल्यू मनी की माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली। वो दूध बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। इमेजिन कीजिए, जब घर में इनकम इतनी लिमिटेड हो तब बच्चों को पढ़ाई करवाना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैल्यू मनी की माँ चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और शायद यही बिलीव था जिसने वैल्यू मनी के अंदर भी एडुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पैदा किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो कोयम्बटूर चले गए। लेकिन यहाँ चैलेंज और बड़ा था। सिटी के कॉलेजेस की फीस उस टाइम लगभग 1,000 से 3,000 रुपए तक होती थी। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने एक ऑप्शन चुना, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय। ये कॉलेज शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। यहाँ फीस कम थी, करीब 300 रुपए, लेकिन हॉस्टल का खर्चा फिर भी उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। उन्हें गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया जो फ्री था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ तक आने जाने का खर्च भी उनके लिए मुश्किल था। बस का किराया एक तरफ लगभग 60 पैसे था, मतलब महीने का लगभग 30 रुपए। ये भी उनके बजट से बाहर था। लेकिन वैल्यू मनी ने यहाँ भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। उस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन का 3 मंथ स्टूडेंट पास सिर्फ 7 रुपए था और यही उनका डेली रूटीन बन गया। वो रोज सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ते थे जो उन्हें 6 बजकर

25 मिनट पर कोयम्बटूर पहुंचा देती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज लगभग 9 बजे शुरू होता था, मतलब उनके पास लगभग 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होता और शाम को भी ट्रेन 6:10 की थी, तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी काफी टाइम बच जाता था, यानी हर दिन उनके पास लगभग 6 घंटे का खाली समय होता। अब कोई भी स्टूडेंट होता तो शायद इस समय को वेस्ट कर देता, लेकिन वैल्यू मनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस टाइम को अपनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बना लिया। वो रोज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लगभग 1000 दिन तक और करीब 6000 घंटे इन्होंने प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई की। कभी कभी लाइफ हमें परफेक्ट एनवायरमेंट नहीं देती, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इंसान कहीं भी सीख सकता है। वैल्यू मनी बाद में कहते हैं, दैट रेलवे प्लेटफॉर्म एक्चुअली मेड मी अ साइंटिस्ट, और सच में वही डेडिकेशन उन्हें आगे लेकर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने बीएससी डिग्री पूरी कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी लाइफ आसान नहीं हुई। अब एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था और वो था करियर शुरू होने का। उन्होंने छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन वहाँ जो उनको सैलरी मिलती थी वो इतनी कम थी कि शायद आज के टाइम में सुनकर लोगों को यकीन भी ना हो, लेकिन उस जॉब ने इनको बहुत बड़ा लेसन दिया और वही लेसन आगे चलकर उनकी जर्नी की शुरुआत बनने वाला था। क्या था वो मोमेंट, कैसे एक साइंटिस्ट बनने की जर्नी शुरू हुई और लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो वैल्यू मनी को बिजनेस की तरफ लेके आया, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 99.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं ए वैल्यू मनी के बारे में। ए वैल्यू मनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और किस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो घंटों तक पढ़ते रहे, लेकिन असली टेस्ट तो शुरू होता है जब पढ़ाई खत्म हो जाती है और लाइफ में करियर स्टार्ट करने का टाइम आता है। वैल्यू मनी की कहानी में भी यही फेज आया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कोयम्बटूर की एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की। अब सैलरी सुनिए, सिर्फ 150 रुपए महीना। आज के वक्त में शायद ये बहुत छोटा अमाउंट लगे, लेकिन उस टाइम ये कोई बड़ी सैलरी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वैल्यू मनी अपनी सैलरी में से 100 रुपए हर महीने अपनी माँ को भेज देते थे और बाकी 50 रुपए में पूरा खुद का महीना मैनेज करते थे। इमेजिन कीजिए, 50 रुपए में पूरा महीना। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक ये कंपनी बंद हो गई और वैल्यू मनी बेरोजगार हो गए। अब सिचुएशन फिर वही थी, अनसर्टेनिटी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक प्रॉब्लम के रूप में आती है। वैल्यू मनी ने हार नहीं मानी, इन्होंने अप्लाई किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था BARC में काम करते हुए। इन्होंने सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि अपनी हायर स्टडीज भी पूरी की। धीरे धीरे चलकर रिसर्च फील्ड में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर वो साइंटिस्ट बन गए। लगभग 14 साल तक इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम किया। एक स्टेबल जॉब, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन, कई लोग यहीं सेटल हो जाते। लेकिन वैल्यू मनी के माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट बार बार आता था, क्या मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूँ? और यही थॉट धीरे धीरे ड्रीम बन गया। लेकिन ड्रीम को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है रिस्क, करेज और सपोर्ट। और वैल्यू मनी की लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट था जिसने उस ड्रीम को रियलिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो सपोर्ट था उनकी वाइफ का। कौन थी वो और कैसे इन्होंने वैल्यू मनी के साथ मिलकर एक छोटी सी लैब से एक बड़ी कंपनी की फाउंडेशन रखी, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ ए वैल्यू मनी के जर्नी के बारे में। कैसे इन्होंने साइंटिस्ट के तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगभग 14 साल तक काम किया, एक स्टेबल जॉब, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लाइफ आराम से चल सकती थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कम्फर्ट जोन में रहना पसंद नहीं होता। वैल्यू मनी के माइंड में भी एक थॉट बार बार आता था, कुछ अपना करना है,

किंग ऑफ माय ओन। और आखिरकार 1995 में इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी सेविंग से एक छोटी सी लैब शुरू की। ये पैसा भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लगभग 1 लाख, जो उनके पीएफ से आया था, और यहीं से शुरू हुई थायरोकैट टेक्नोलॉजीज की जर्नी। लेकिन शुरुआत भी आसान नहीं थी। उनकी लैब मुंबई में थी और शुरू के दिनों में सिर्फ रोज 2 सैंपल्स आते थे। यस, सिर्फ 2 सैंपल्स अ डे। कई लोग ऐसे मोमेंट पर शायद हार मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू मनी ने पेशेंस नहीं छोड़ा। उनका विजन बहुत क्लियर था, डायग्नोस्टिक टेस्ट को अफोर्डेबल बनाना, ताकि आम लोग भी आसानी से मेडिकल टेस्ट करवा सकें। धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया, कम कॉस्ट, हाई वॉल्यूम और वाइडर रीच। और यहीं पर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी था। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उनकी वाइफ सुमति वैल्यू मनी ने SBI की अपनी जॉब छोड़ दी और कंपनी में भी उनका साथ दिया। वो सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं थी बल्कि कंपनी की फर्स्ट एम्प्लॉय भी थी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, धीरे धीरे लैब्स बढ़ने लगी, सैंपल कलेक्शन सेंटर बनने लगे और थायरोकेयर का नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा। आज थायरोकेयर के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स हैं। और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6600 करोड़ के आसपास है। लेकिन सक्सेस की इस जर्नी में एक ऐसा मोमेंट भी आया जो शायद बहुत इमोशनल था। 2016 में थायरोकेयर का IPO आने वाला था। ये वैल्यू मनी के करियर का बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन उसी समय वाइफ सुमति वैल्यू मनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। 12 फरवरी 2016 को वो दुनिया से अलविदा कह गई और कुछ ही महीनों बाद कंपनी का IPO लॉन्च हुआ, जो लगभग 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वैल्यू मनी अक्सर कहते हैं, मेरी अर्ली लाइफ की इंस्पिरेशन मेरी माँ थी और मेरी बिजनेस सक्सेस की वजह मेरी पत्नी थी। उनकी जर्नी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। सक्सेस हमेशा बड़े रिसोर्सेज से नहीं आती, कभी कभी सक्सेस सिर्फ फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। और शायद इसीलिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का आज हजारों करोड़ की कंपनी का फाउंडर बन गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और याद रखिए, ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का करेज बड़ा होना चाहिए। टेक केयर एंड कीप ड्रीमिंग बिग। और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

आज मैं एक सवाल के साथ आई हूँ। अगर मैं कहूँ कि घर की सबसे महंगी जगह ड्राइंग रूम नहीं होती, सबसे खास जगह बेडरूम नहीं होती, तो आप कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ धूप पैर फैलाकर बैठी थी, जहाँ बारिश मिट्टी से बातें करती थी, जहाँ बचपन चिल्ला चिल्ला कर हंसता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं घर के आंगन के बारे में। 89.6 FM पर मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा। और कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है घर के आंगन तक। आज बात करेंगे उस जगह की जो न सिर्फ घर का सेंटर होती थी बल्कि जिंदगी का रिदम भी होती थी। वो कहा है कि आंगन सिर्फ जगह नहीं होता, ये घर की सांसों का पता होता है। अब सवाल ये है कि आखिर आंगन आया कहाँ से? इस कॉन्सेप्ट पर आज बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हो आंगन कोई डिजाइन ट्रेंड नहीं था, ये एक सोची समझी जरूरत थी। जी बिल्कुल, माना जाता था कि पुराने इंडियन घर कोर्टयार्ड के बिना अधूरे माने जाते थे। वास्तु के हिसाब से आंगन घर का भ्रम स्थान होता था, जहां से हवा, रोशनी और एनर्जी पूरे घर में फैलती थी। ये वही जगह थी जहां सुबह सूरज पहला कदम रखता था और शाम को दिया जलता था। ना एसी था, ना एग्जॉस्ट फैन था, फिर भी घर सांस लेता था। वो कहा है कि आंगन ने हमें सिखाया खुली छत के नीचे भी घर महफूज होता है। आखिर कॉन्सेप्ट तो जाना आंगन कहाँ से आया, और बात करेंगे आगे भी आंगन और रोज की जिंदगी के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: तन पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कभी आपने सोचा है, अगर आंगन बोल पाता तो शायद सबसे ज्यादा कहानियां वही सुनाता। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम बात कर रहे हैं आंगन के कॉन्सेप्ट के बारे में, आंगन और रोज की जिंदगी। इसी आंगन में माँ धूप में अचार मिलाती है, दादी गीली जमीन पर बैठकर दाल छाटती है, बच्चे गिट्टे कंचे स्टैपू खेलते थे, शादी हो या शौक आंगन सबका गवाह होता था। यहाँ कोई मेहमान अजनबी नहीं लगता था क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी, ओपन वार्म एंड इंक्लूसिव। वो कहा है कि आंगन ने हमें सिखाया जिंदगी बंद कमरों में नहीं पलती। फिर धीरे धीरे इसके पीछे का साइंस एक ट्रेडिशन बन गया। अब बात कर ही रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में तो थोड़ा साइंस भी जान लेते हैं। जो चीज सालों से हमें परंपरा लगती है अक्सर उसके पीछे साइंस खड़ी होती है। ठीक ऐसा ही कुछ आंगन के कॉन्सेप्ट के पीछे भी था। दरअसल आंगन टेम्परेचर को रेगुलेट करता था, गर्मी में ठंडक और सर्दी में सनलाइट देता था। और साथ ही अगर बात की जाए बरसात की तो कहा जाता है कि बारिश का पानी सीधा मिट्टी में जाता, इसलिए ना सीपेज ना गर्मी की मार, इन सारी चीजों से हमें आंगन ही बचाता था। और इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा, मिट्टी की सुगंध, खुला आसमान, ये सब मिलकर घर को हेल्दी बनाते थे। वो कहा है कि हमने जिसे रिवायत कहा वो प्रकृति का फॉर्मूला निकला। आंगन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो पूरी कहानी है। आंगन के पीछे की कहानी जानी, कॉन्सेप्ट जाना,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

आंगन और बाती। एक घर को अगर किसी ने संभाला तो अक्सर वो काम आंगन में हुआ। 89.6 FM पर मैं हूँ आर्जेंसली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। माना जाता था कि आंगन कोई मामूली चीज नहीं था, आंगन महिलाओं की दुनिया का सेंटर था। यहीं बैठकर वो काम भी करती थी और सांस भी लेती थी। यहीं से रिश्तों की बातें निकलती थी, यहीं से परिवार की प्लानिंग होती थी। आंगन उनका ऑफिस भी था और उनका सेफ स्पेस भी। वो कहा है कि आंगन ने औरत को बंद नहीं किया, उसे खुला रहने का मौका दिया। आखिर इतना खास होने के बाद भी आज सवाल ये उठता है कि आंगन कहाँ गया। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि घर बड़े हो गए पर जगह छोटी हो गई। धीरे धीरे आंगन कहीं खोसा गया। फ्लैट्स आए, बैल्कनीज रह गई, पर बैल्कनी में वो बात नहीं जो आंगन में थी। आज हम धूप भी टाइम टेबल से लेते हैं और हवा भी फिल्टर करके। शायद इसलिए हम कनेक्टेड रहकर भी थोड़े अलग अलग लगते हैं। वो कहा है कि कॉन्क्रीट के घर बने पर मिट्टी वाली फीलिंग कहीं छूट सी गई। कल्चर कारवा का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आज अगर आंगन वापस आ जाए तो शायद घर थोड़ा और घर लगने लगे, और अगर जगह ना हो तो कम से कम यादें जिंदा रखिए। कल्चर गारवा का आज का सफर हमें एक ऐसी कहानी के पास ले आया, एक ऐसे कॉन्सेप्ट तक ले आया, जहां हमने ये जाना कि कितना जरूरी होता है एक घर का घर कहलाना, जहां सिर्फ लोग मायने नहीं रखते, जहां मायने रखता है आंगन भी। जिस घर में धूप मुस्कुराए, समझ लो वहां कभी आंगन था। कल्चर कारवा के आज के सफर में हमने बात की आंगन के कॉन्सेप्ट के बारे में। जानी आज इससे जुड़ी हुई कहानी, जाना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और जाना इसके पीछे की साइंस। आंगन घर की सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि घर का एक हिस्सा रहा, जिसने एक मकान को घर बनाया। फिलहाल अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल्चर कारवा के इस सफर में कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ, एक नई याद के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: सो गाइस, कैसे हो आप सब? आज तो फ्राइडे है ब्रो, और इतनी जल्दी से टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो मंडे था और अभी फ्राइडे भी आ गया, देखो ना कितनी तेजी से टाइम बीत रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ, और फ्राइडे का इंतजार मैं हमेशा करता हूं। आई डोंट नो व्हाई, कोई सैटरडे संडे एक्साइटिंग नहीं होता, मेरा नॉर्मल से रहता है। तो बस ये बताने आ गया था कि मैं आ गया हूं, और अभी बस मैं यूं आया गाना चला रहा हूं आप लोगों के लिए। डीनो जेम्स की आवाज़ में एक गाना है, विशलिस्ट, काफ़ी अच्छा है। सुनिए इस गाने को और अपने लाइफ को मोटिवेट कीजिए, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मौसम तो सुबह से ऐसा हो रहा है ना, मतलब मन कर रहा था कि फिर से बारिश आ जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि देखो उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बस यही कहूँगा, मेरी आवाज़ भी इसलिए लटक रही है क्योंकि सच में उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी उमस की। वैसे ऑल दो कम है उमस आज, बट मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिन में एल नीनो दोबारा से एक्टिव हो रहा है। एल नीनो क्या है सब कुछ बताऊँगा, रुको ज़रा सब्र करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। और भाई लोग, फ्राइडे आज तो कोई तो प्लान्स होंगे आप लोगों के, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी कोई प्लान्स नहीं है, घर बैठूंगा आराम से, यहां से जाऊंगा और घर चले जाऊंगा। बट अभी 3 घंटों के लिए आप सभी के साथ आ गया हूं। तो अगर आप लोगों के भी कोई प्लान्स नहीं है तो आपको बता दूं, पहली बार अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो अगले 3 घंटे आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी पता, देखो 1 घंटे तक तो आप लोग मेरे साथ बातें कर सकते हो। जस्ट बिकॉज हमारे फरीदाबाद में हर जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, जस्ट बिकॉज। और ये मेरे को मीम याद आ गया, खैर मीम को भी साइड में रखते हैं, मीम याद आया तो इंस्टाग्राम की बात करूँगा। और इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आया है जो कि लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है। खैर अच्छा क्या है अभी इंसानों के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। खाना कहाँ अच्छा है, हवा कहाँ अच्छी है, पानी कहाँ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो सब चीज़ों के बारे में करेंगे बात। और आज मैंने फरीदाबाद की पब्लिक से भी जानकारी ली, और इसी बीच में अगर आप लोगों को भी मुझसे बातें करनी है तो जी नंबर है मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर गाना चला रहा हूँ, बवाल। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मैं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: एंड बार।
1: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
3: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
4: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बारिश जा चुकी है, बारिश चली गई, बारिश आ जाती है तो कोई गाना है तो बताओ यार, मैं भी गाऊंगा, फिर बारिश आ जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा इतना ज़्यादा बारिश से ऑब्सेस्ड क्यों है। देखो, बारिश अच्छी चीज़ है, नहीं ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं एक बात बोलूँगा कि हम लोग ना वाटर लॉगिंग को बड़ा ही कॉमन समझ चुके हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार वाटर लॉगिंग हो रही है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ढील दे चुके हैं, तो इन सबको नहीं करना। और इसी को लेकर मैंने आज बाहर जाके पब्लिक से भी बात करी। तो किन से बात करी सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, सुनाऊंगा मतलब आप लोगों को। मगर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं फरीदाबाद के वेदर के बारे में। देखो, अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन कोई बारिश नहीं आएगी, मतलब आज रात तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था दिल्ली NCR में। बट आप लोगों ने भी देख लिया, अभी सुबह से लेकर अभी तक तो एक भी बूंद नहीं पड़ी है और आगे भी नहीं पड़ेगी। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिन अब आपको गर्मी ही गर्मी देखने को मिलने वाली है, यानी कि सैटरडे संडे मंडे की तो चलो बात हम लोग आके कर ही लेंगे, बट सैटरडे संडे हम लोग मिलेंगे थोड़ी ना। तो बता दूं आपको, सैटरडे और संडे अगर आपके कपड़े जो भीगे पड़े हैं उनको सुखाने का सही टाइम आ गया है, मतलब ये है कि सैटरडे और संडे की छुट्टी अब कपड़े धोने में जाएगी, क्योंकि धूप निकल जाएगी तो फिर उसके बाद कपड़े सुखाने का भी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और हाँ, आपको बातें सुनाऊंगा कि मैंने आज फरीदाबाद के लोगों से क्या बात करी, मगर इस गाने के बाद। सुनिए इस गाने को, AI मेड गाना है मगर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। रेडियो महारानी 89.6 पर, दिस इज द मोस्ट वांटेड मुंडा विद यू।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: ना,

लो जी, मौसम विभाग का कहना है कि अब तो गर्मी ही गर्मी पड़ने वाली है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, आज रात को बारिश हो सकती है हल्की फुल्की, मगर फिर उसके बाद आने वाले दिन आपके लिए गर्म रहने वाले हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। और इसके पीछे रीजन है, रीजन है सुपर एल नीनो। देखो, एल नीनो कर रहे थे हम लोग बहुत टाइम से। अप्रैल में मैंने बोला, मई में मैंने बोला, जून में मैंने बोला, एल नीनो है क्या? एल नीनो इज एन इफेक्ट जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पैसिफिक ओशन में, फिर उसकी वजह से इंडिया का मानसून कमज़ोर हो सकता है। तो बोला जा रहा है कि एल नीनो ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और फिर से कमज़ोर हो सकता है मानसून। और अगर मानसून कमज़ोर हुआ तो 10 से लेके 15 जुलाई तक, देखो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया कहूँगा मैं, और साथ ही साथ जो सेंट्रल इंडिया है, तो इन सब जगह पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो, मुंबई के लोग तो अभी परेशान है, बारिश की वजह से परेशान है। और अब अगर एल नीनो फिर से स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर बारिश रुक जाएगी। फिर देखते हैं कि परेशान होंगे या नहीं होंगे या फिर खुश हो जाएंगे। खैर, अभी बता दूं, एल नीनो की वजह से मानसून हमेशा 100% की जगह 90% ही रह जाता है। और इस बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 90% या फिर 92% ही बारिश होगी, जो अक्सर मानसून में होती है। लास्ट ईयर मानसून में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बारिश हुई थी, बट इस साल एक्सपेक्टेड है कि 90% ही होगी बारिश। तो चलो देखते हैं। वैसे मानसून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के लिए भी, और अगर मानसून कमज़ोर हो गया तो फिर फसलों पर असर पड़ सकता है। चलिए, ये सब चीज़ें बातें करते रहूँगा आप लोगों के साथ। और हाँ, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, डोंट यू थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं वाटर लॉगिंग के साथ? तो करिए, मैंने इसके बारे में बात लोगों से, सुनाऊँगा आप लोगों को मगर इस गाने के बाद।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पूछ अपने बारे में।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
2: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आज मैंने लोगों से बातें करी है वाटर लॉगिंग के बारे में कि कैसे हम लोग कितने कंफर्टेबल हो गए ना कि पानी जमा हो जा रहा है, तो चलिए सुनिए इनकी बातें।
1: गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन शुरू हो चुका है और इसी सावन में एक बहुत ही मजेदार किस्सा हर साल हमारे साथ होता है। हमारे घर के बाहर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें हर बार पानी भर जाता है और या तो कोई स्कूटी डूब जाती है या कोई बच्चा गिर जाता है। तो इस बार हम सारी सोसाइटी वालों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही उसे भर दें, लेकिन हमारी जुगाड़ थेरेपी इस बार काम नहीं आई क्योंकि इस बार बारिशें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो इसीलिए वो जो ईंटें हमने डाली थी वो भी बेचारी उसी गड्ढे में डूब गई। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा शहर भी बहुत जल्दी डूबने वाला है।
2: हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल। और अगर बात करें वाटर लॉगिंग के बारे में तो रेनी सीजन में अगर देखो यार, किसी भी रोड की बात करो, मार्केट की बात करो, सेक्टर्स की बात करो, हर जगह पे वाटर लॉगिंग है ही। होता क्या है, बारिश आती है, हम लोग सड़कों पे जाते हैं, पानी भरा हुआ है, कल न्यूज़ छपती है, परसों डिपार्टमेंट की मीटिंग बैठती है कि यार इसके लिए क्या किया जाए। वाई नॉट कि हम लोग इससे पहले ही, बारिश से पहले ही कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करें। सब चीज़ें प्लानिंग्स कहते हैं होती भी है, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पे पानी दिखता ही है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से चार टैंकर जाते हैं, उसको कैसे सड़कों से पानी कलेक्ट किया जाता है, भाई खाली करें, सब करें, कई जगह पे सड़क भी धस रही है, कुछ लोग सीवर के मेन होल खुले हैं, कुछ उसमें गिरते नजर आ रहे हैं, कहीं सड़क धस रही है, कितना ही ज़्यादा कुछ होते नजर आता है रेनी सीजन में, सिर्फ और सिर्फ रीज़न वाटर लॉगिंग।
3: मानव और जो ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलो ठीक है पानी भर रहा है, उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम एक और भी है कि मतलब उस पानी में जो मच्छर पनप रहे हैं, जो मच्छर जन्म ले रहे हैं, वो हमको बीमारी दे रहे हैं। पहले पानी भर रहा है, गंदगी हो रही है, स्मेल हो रही है, गंदा पानी है, उसको कैसे पार करना है, कैसे उस पानी को पार करके ऑफिस पहुंचना है, फिर उसके बाद मच्छरों से कैसे बचना है, कि हम इसलिए हम इतना रोड टैक्स भर रहे हैं कि हमें एक अच्छी रोड की फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाए।
0: तो ये थे हमारे फरीदाबाद के कुछ नागरिक जो अपना दर्द बयां कर रहे थे, और आगे भी आप लोगों के साथ कुछ और लोगों की बातें लेकर आऊंगा जिन्होंने बात करी है मेरे साथ सिटी में गार्बेज की। करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।
4: नींद नींद

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।
2: सोचना है जाना कहां,
1: तो थोड़ा फोन डाउन कीजिए और जिंदगी खुलकर जीना शुरू कीजिए। रेडियो महारानी कहता है, जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से जी जाती है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: आजकल हम लोग जहाँ पर भी देखते हैं हम लोगों को नजर आता है कूड़ा कूड़ा और कूड़ा, और ऊपर से बारिश आ जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैंने आज बात करी कुछ फरीदाबाद के नागरिकों से और तीन लड़कियों से बात करी, तो उनकी आवाज मैं आपको सुनाता हूं।
1: गार्बेज को हमने इतना नॉर्मल इसलिए मान लिया है क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम सोचते हैं कि कोई और साफ करेगा, हम ये भी सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है, बट ऐसा नहीं है। पब्लिक की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी की गवर्नमेंट की है। पब्लिक को भी अपने आसपास का कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि रोडों पे सड़कों पे ऐसे ही फेंक देना चाहिए।
2: तन्वी, और मैं बस तीन चार लाइनें ही बोलना चाहूँगी कि हमने गार्बेज को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर लिया है, क्योंकि शायद हम इतने हमारे अंदर इतना आलस आ गया है कि हमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम एक रैपर को उठा कर डस्टबिन में डाल सकें। मेरी आप लोगों से सभी से यही एडवाइस है कि ये देश हमारा ही है, हम ही रहते हैं इसमें, तो इसको साफ और स्वच्छ रखें, जितना हो सके गार्बेज को डस्टबिन में डालें, ताकि जिससे कि बीमारियां जो है, गंदगी जो है वो ना फैले। धन्यवाद।
3: नमस्कार, मेरा नाम पलक सिंगल है और मैं ये कहना चाहूँगी कि गार्बेज को हमने इतना नॉर्मलाइज इसलिए कर दिया है क्योंकि जब तक वो गार्बेज हमारे घर के आसपास या हमारे घर के अंदर नहीं होता, तब तक हम उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अभी गली की बात है, दो पड़ोसने आपस में लड़ रही थी कि तूने कूड़ा मेरी तरफ क्यों कर दिया। अरे भाई, कूड़ा पड़ा है बीच में, अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे लोकैलिटी की, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे उठा करके फेंक दो, उस पर लड़ना क्यों?
0: बिल्कुल, उस पर लड़ना क्यों है, इसके ऊपर तो बातें होती रहेंगी। क्योंकि देखो, फरीदाबाद की जब भी बात आती है ना, तो दो तीन चीज़ों के नाम ज़रूर आता है, एक तो हरियाणा का खाना, दूसरा फरीदाबाद की मेहंदी, और तीसरा है कूड़ा हर जगह हम लोगों को मिल रहा है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, बातें और गाने यूँ ही चलते रहेंगे, मगर उससे पहले आप

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो आशा, तुम सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

चुन्नी मेरी रंग दे यार दे गड्डी दे नार दी। भाई वो दर्जी है, वो कलर लगाता है या फिर वो AI एक्सपर्ट है? नहीं, ये सवाल पूछना बनता है क्योंकि आजकल लोग AI से कुछ भी कर दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड यू नो व्हाट, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती, चेंज होते रहती है, और ये चेंजेस आए हैं इस बार मेटा के इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम

और WhatsApp पर न्यूज इमेज MUSE न्यूज नहीं म्यूज इमेज नाम का एक फीचर लेकर आए हैं वो लोग, जिसमें AI पावर्ड इमेज जनरेटर है। मतलब आपकी इमेज बना सकते हैं विदाउट योर परमिशन। मतलब क्या हो सकता है, Instagram का कोई भी यूजर कोई भी पोस्ट करने के लिए पब्लिक फोटो जनरेट करवा सकता है, वो भी AI से। उसको क्या करना होगा, उसको बस लिखना होगा @ और फिर उसके बाद आपके अकाउंट का यूजर नेम अगर लिख दिया ना, तो फिर आपकी अकाउंट की जो DP है, DP मीन्स डिस्प्ले पिक्चर, वो जो DP है ना प्रोफाइल पिक्चर, उसका AI वर्जन बन जाएगा और वो यूज़ कर सकता है उसको कहीं पर भी पोस्ट करने के लिए। अब इसको लेकर सब लोग शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है, हमारी प्राइवेसी के बीच में आप लोग घुस रहे हैं। मगर मैं बता दूं जानी कि ऐसा नहीं है। आप लोग अगर Instagram यूज़ कर रहे हो ना, तो प्राइवेसी तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोग अगर Instagram पे कोई भी मैसेज कर रहे हो तो Instagram बैकएंड पे जो टीम बैठी है वो इजीली एक्सेस कर सकती है आपका अकाउंट, इजीली एक्सेस कर सकती है कि आपने किससे क्या बात करी है Instagram पे और आपने किससे क्या क्या मैसेजेस भेजे हुए हैं, क्योंकि Instagram चैट्स आर नॉट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। WhatsApp पर आता ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वैसा ही Instagram पे नहीं आता है। तो भाई लोग मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि Instagram पर अब जो फीचर आया है ये प्राइवेसी का उल्लंघन तो है, बट इसके साथ साथ आप लोग इस चीज़ को डिसेबल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

इंस्टाग्राम ने अलाउ कर दिया है सारे यूजर्स को कि वो आपके यूजर नेम की एक एआई इमेज जनरेट करके पोस्ट कर सकते हैं पब्लिकली, तो इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं डर दी रब रब कर दी, और यही होएगा कि अगर हमें डर लगेगा तो हम भी रब रब ही बोलेंगे। हम बोलेंगे हे भगवान, हमारी इमेज का एआई इमेज नहीं बनवाना हमें। तो बता दूं आपको, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज का कोई इस्तेमाल ना करे और कोई उसकी एआई इमेज ना बनाए, तो आप लोगों ने करना क्या है? देखो, आपने अपने अकाउंट में जाना है और सबसे पहले अपने अकाउंट को पब्लिक से प्राइवेट कर देना है, क्योंकि प्राइवेट वालों के लिए ये फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब कोई और इंसान आपके प्राइवेट, अगर आपका अकाउंट है तो आपकी इमेज का यूज़ नहीं कर पाएगा। और अगर मैं आगे बात करूँ तो सिंपल सी बात यह है, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो आपको जाना अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल के बाद जाना है मेन्यू में जाना है, फिर उसके बाद आएगा एक ऑप्शन शेयरिंग एंड रीयूज। वहाँ जाकर आपको AI को इंस्टाग्राम पोस्ट और रील्स का दोबारा इस्तेमाल करने, जो वो ऑप्शन आता है ना जिसमें लिखा हुआ आता है कि क्या AI आपकी इमेज को रीयूज कर सकता है या फिर आपकी रील्स को रीयूज कर सकता है, तो उसको आपको बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है बस। और जैसे ही आप डिसेबल करोगे तो फिर आपके अकाउंट की कुछ भी चीज़ें रीयूज नहीं होगी, यानी कि आपकी प्रोफाइल पिक को कोई भी रीयूज नहीं कर सकेगा। बस इतनी सी सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर आप अभी भी गलतफहमी में हो कि आप इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रहे हो और सब कुछ प्राइवेट है, तो भूल जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब आप चैट करते हैं वो कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, कोई भी एज इन जो बैकएंड टीम पर बैठे हैं वो, और उसके अलावा और भी हैकर्स भी तो बैठे हैं। तो चलिए, सबसे सावधान रहिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए। घूमने के प्लान्स बन रहे हैं तो ये गाना जरूर सुनिए।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

वॉट डू यू थिंक गाइज, लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनकी लाइफ देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कितनी लैविश लाइफ जी रहे हैं, इनको तो मज़ा ही आता होगा, ये लोग तो दिन भर एंजॉय करते हैं, ब्रांड्स इनके पास अपने आप भागे भागे आ जाते हैं, फ्री में इनको कपड़े मिल जाते हैं, फ्री में इनको खाना मिल जाता है, घूमना फिरना सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री में हो ही जाता है, और फिर उसके बाद कहीं पर अगर जाएं तो वहां पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने से पैसा मिल जाता है, मगर हर बार ये चीज़ सही नहीं होती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अभी मैं ना सोच रहा था बैठे बैठे कि अगर कल को बाय एनी चांस आप लोग भी इस बात को सोचिए कि अगर हम लोग कल को फेमस हो गए तो क्या आप जिस आज़ादी के साथ अभी इस टाइम घूम पा रहे हो क्या कल को घूम पाओगे, क्या आप जो अपने दोस्तों के साथ हरकतें करते हो क्या वो हरकतें आप फिर से दोबारा कर पाओगे ओपनली बिना किसी के जज किए हुए? नहीं मेरी जान, नहीं कर पाओगे आप लोग। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि एक्टर्स की लाइफ और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी लाइफ ईजी नहीं है, क्योंकि हर पल हर सेकेंड उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। अगर आवाज उठाए तो दिक्कत, ना उठाए तो दिक्कत। अगर आपको लगता है ना कि उनकी लाइफ बहुत लैविश है तो एक काम कीजिए, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाइए और एक बार जाकर उनका कमेंट सेक्शन ओपन करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सब लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और ऑल्दो मैं मानता हूँ काफ़ी सारे फैंस होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फैंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो आपकी प्राइवेसी की भी कदर नहीं करते हैं। तो एक्टिंग इज नॉट ईजी, बींग अ सेलेब इज नॉट ईजी, और एक्टिंग की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली रश्मिका मंदाना इनका एक वीडियो आया है। रश्मिका तो पता है ना आप लोगों को, पुष्पा 1 पुष्पा 2 दोनों में जो लीड एक्ट्रेस थी। हाँ, तो रश्मिका का एक वीडियो आया है, शूटिंग का वीडियो आया है, क्या है उस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: पाका छोड़ दूं किसे चीज की ग्रीड को.

मेरे कानी एड़े डीप कोने मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कोने मैं रात ने सुननी बीट टाइम मेरे तो लीड कोने आई एम जीओडी आना करे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जगोरी मेरे तो जीप कोने।

सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग एंड सेलिब्रिटीज, लाइक एक्टर्स की लाइफ और सेलिब्रिटीज, मगर उसी के बीच में नाम लिया मैंने रश्मिका का। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। रश्मिका नेशनल क्रश कह लो उन्हें, क्योंकि एक टाइम पे तो थी यार नेशनल क्रश, और मैंने भी फॉलो कर रखा है अभी इंस्टाग्राम पे, बट रीसेंट जो वीडियो आई है ना उसको देखने के बाद पता चला कि नेशनल क्रश बनने के लिए भी और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भी इतनी मेहनत लगती है। यू वोंट बिलीव जो मैं बताने वाला हूँ, 20 घंटे अंडर वाटर फाइटिंग सीन शूट किया है, और ये पढ़ते ही मैं तो हैरान हो गया। मैं सोच रहा था एक नॉर्मल इंसान के लिए करना मुश्किल है, ये तो फिर भी एक्ट्रेस हैं, लैविश लाइफ जी रही हैं, अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है, सब कुछ इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, मगर इनकी एक फिल्म आने वाली है मैसा, और उसके लिए अंडर वाटर सीन था। पहले तो मुझे लगा सिर्फ और नॉर्मल सीन होगा जिसमें शूटिंग के लिए टाइम लग गया होगा, बट नहीं, स्कूबा डाइविंग सीखी पहले, फिर उसके बाद इन्होंने अंडर वाटर पहले प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद अंडर वाटर फाइट सीन भी शूट किया, और दो दिनों में लगभग इन्हें 20 घंटे की शूटिंग करनी पड़ी, और इन्होंने बिना बॉडी डबल का इस्तेमाल किए हुए पूरा का पूरा शूट कंप्लीट किया है, क्योंकि ये भी बनना चाहती है मिस परफेक्शनिस्ट। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ये जो फिल्म आ रही है ना, तो वो फीमेल लीड है, मतलब पूरी की पूरी फीमेल सेंट्रिक मूवी है, तो मुझे लगता है कि एक बार तो देखनी पड़ेगी, और ये सीन तो मैं ज़रूर देखूंगा। और बस यही कहना चाहता हूं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, यानी कि सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स की लाइफ सुहानी तो लगती है, बट हाँ उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। चलिए अभी रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए AI मेड गाना सिद्धू मूसेवाला आतिफ असलम दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

के जेरा सेरा, मतलब जो भी हो सो हो। मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने भी यही सोच लिया था कि जो भी हो सो हो, क्योंकि कल तो करो या मरो वाली स्थिति थी। बट मैं बेवजह ही जागा रात के 10 बजे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। एक्चुअली मैं 10 बजे खाना खत्म होता है, फिर उसके बाद मैं जागा रहा। मैंने सोचा चलो टीम इंडिया इस बार कुछ ना कुछ कमाल दिखा देगी, कुछ ना कुछ कमाल कर देगी। टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरी, अभिषेक शर्मा और साथ में वैभव सूर्यवंशी। फिर वही हुआ, 15 रन पे वैभव आउट हुआ, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा, फिर सब लोग धीरे धीरे धीरे धीरे करके आउट होते चले गए एंड टीम इंडिया लॉस्ट वंस अगेन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो दो सीरीज हार चुकी है टीम इंडिया और ना जाने ये क्या करना चाह रहे हैं। पहले तो आयरलैंड से हारे, चलो वो मैं बोलता हूँ तुक्का था, आयरलैंड वाले किस्मत से जीत गए। बट इंग्लैंड के अगेंस्ट नो डाउट पहला मैच जहाँ अच्छी बैटिंग करी थी वो बारिश से धुल गया था। सेकंड मैच हारे, तीसरा मैच हारे, अब तो चौथा मैच भी हार चुके हैं और सीरीज भी हार चुके हैं। अब सब जगह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीनकर गलत किया है, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कैप्टेंसी के अंडर साल 2024 में हम सब ने देखा कि हम लोग वर्ल्ड कप भी लेकर आए थे और अब वर्ल्ड कप फिर से आ रहा है T20 का, तो क्या उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं या फिर नहीं। ये सवाल तो सबके मन में है और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कैप्टन श्रेयस अय्यर की, क्योंकि कप्तानी पारी तो खेली है नो डाउट, बट टीम इंडिया इस बार बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना, वापस आकर और भी बातें करते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

है सैटरडे और कल होने जा रहा है फिर से मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और अब मैं प्रे कर रहा हूँ कि देखो वाइट वॉश ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वाइट वॉश हो जाएंगे ना फिर तो हर जगह थूथू हो जानी है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और वर्ल्ड कप T20 आने वाला है साल 2026 में, मतलब आने वाला क्या है, गया है अभी, और हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट अभी मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि वर्ल्ड कप नॉर्मल वाला आने वाला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए, सारे प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है। मगर टेस्टिंग एक मैच में होती है, दो मैच में होती है, तीन चार पाँच ऐसे हर मैच में टेस्टिंग थोड़ी ना होती है। तो सवाल तो उठ रहे हैं, और यहाँ पर जो कल कमेंटेटर्स थे पार्थिव पटेल एंड जतिन सप्रू एंड ऑल, वो सब लोग यही कह रहे थे कि क्या हो गया है टीम इंडिया को, क्या ये बॉलिंग ख़राब थी? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा बॉलिंग ख़राब थी, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और उसके बावजूद हम एक विकेट से ज़्यादा नहीं गिरा पाए, और इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया था। तो यहाँ पर मैं सभी पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है कि क्या हुआ हम लोगों के साथ, मतलब क्या गलत हुआ, और कल के मैच में क्या कर सकते हैं, यानी कि कल सैटरडे को क्या कर सकते हैं। देखो हम सब अपनी अपनी राय तो ज़रूर देंगे ना, भले ही हमारी राय सुनी जाए या ना सुनी जाए, बट देने तो ज़रूर है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और हाँ राय के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और अभी आप सभी के लिए वीकेंड वाला गाना चला रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे है ब्रो, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

यू नो वॉट, आजकल ना बारिश की वजह से पानी जमा हो रहा है हर जगह और उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के मच्छर बढ़ रहे हैं। घर में अगर वो मस्किटो रिपेलेंट क्रीम नहीं है तो लेकर आ जाओ, स्टॉक भर लो, क्योंकि अगले 2 महीने मच्छरों की तादाद बढ़ने वाली है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप लोग भी सोच रहे होंगे फ्राइडे की शाम को गौरव कैसी बातें कर रहा है, फ्राइडे की शाम तो पार्टी वाली बातें होती हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे तभी तो पार्टी कर पाओगे, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मगर इसी के साथ साथ अपना ख्याल भी रखो, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के मच्छर बढ़ रहे हैं और डेंगू के केसेस हम सबको पता है कि कितने ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो चलिए बस अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपका फ्राइडे तो मेरा भी तो फ्राइडे है, निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे की शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, गीत आ रही है वापस, विद इश्क बाजिया, अच्छे अच्छे गाने लेकर आती है, सुनिए उसके शो को, इश्क बाजिया विद इश्क वाली गीत। फिलहाल आप सभी के लिए एक ऐसा गाना चला रहा हूँ जो कि आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा, साल 2010 तक ले जाएगा ये गाना। जग्गी डी की आवाज़ में सुनिए इस गाने को, तेरे नाल नचना, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
5: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

कुछ लम्हे किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं, कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूबकर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहाँ हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

वैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले, खैर इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पाने की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना है, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ।

ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: को अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।

एस चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और ए आर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज़्म-ए-शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहाँ वो बादशाहत की ताकत के निशान है, वहाँ मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से, वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी, जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली जी।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थीं जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोर दा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोर दा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोर दा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते

पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

सियासत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

इंसानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: I hate water wasting रे, जा के टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो।

0: क्या झुमका?
1: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और दीवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: जाना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया इसलिए।
0: अच्छा, आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: ओ जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मुस्कुराई पहले जरा मुस्कुराई
1: पहले जरा मुस्कुराई।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पर है
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े
1: मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बकर सिरा कूड़े

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

0: भाई क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है, बोलो।
1: बातों की एक बात यही है,
0: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: सानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।